0: होवे को समय हो गया है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।

जाओ रगे वीर रे आज बिनय सुन लो हमारी।

हरि तन से भजलो रे हरि, राम नाम है जग में सा।

उठा साट का नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

हे अमर नाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

आसाराम कहत हैं भाई।

भजन करो हरि जगत करतार, भजन करो हरि जगत।

रण करे ते विसर जेने लंका राज दिलाए।

0: करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत जगतारे भजन करो हरि जगत
1: साड़ी सर से

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
0: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती की, खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
0: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा। चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी, ललितपुर, आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर,
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग, इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है, इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी।
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी।
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
3: जी, जी।
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
3: बिल्कुल सर।
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
3: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
3: जी।
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
3: जी।
2: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
4: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
3: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके स्व स्वावलंबन में आए
3: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
3: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
3: बिल्कुल सर,
2: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
3: जी,
2: जैसे बेसन है
3: जी,
2: दलिया है
3: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है,
3: बिल्कुल सर।
2: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
3: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG जो है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या FIO होता है
3: जी,
2: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाएं और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
4: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर
2: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
3: जी।
2: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गांव में लोगों को, इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं
3: जी,
2: जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
3: जी।
2: और जो चीजें हैं आज के युग में जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
3: जी,
2: उसमें चीजें हैं हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है,
3: घर में है।
2: अगर चावल की बिनाई कर ले, बाई बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
3: जी,
2: दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
3: जी,
2: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, तो इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
3: जी,
2: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए, जो दलाल है ब्रोकर्स हैं जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है
3: जी,
2: वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है, आज के समय में एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
3: जी।
2: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है
3: जी।
2: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
4: बिल्कुल सही,
2: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
4: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
2: कोई चीज बिकती कब है, जब क्वालिटी होती, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख लें
4: जी,
2: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
4: बिल्कुल सर।
2: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
4: बिल्कुल सर।
2: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
4: बिल्कुल सर।
2: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
4: बिल्कुल।
2: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है
4: जी।
2: यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
4: बिल्कुल सर।
2: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
4: जी।
2: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
4: बिल्कुल।
2: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
4: जी।
2: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
4: जी।
2: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
4: जी।
2: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
4: जी
2: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
4: जी,
2: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
4: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
2: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है, गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
2: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1000 2000 4000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे।

0: और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है, और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं, और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
2: धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है, यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा। अब आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारी युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मरीज को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में हम अपने सभी श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं और नमस्कार सब साथियों को
1: हमारे भी नमस्कार।
0: अरे मनीष भैया तनक बोलन तो दू करे कम से कम हमें आप बीच बीच में टोक देते ही। मतलब का है तुम बात कर रहे थे अपने साथियों
1: से। नहीं हमारे भी नमस्कार पहुंच जावे सभी अच्छा। श्रोता साथियों को काय से हम वो कामयाब कार्यक्रम जो रथ है वो
0: हाँ, वो तुम है।
1: नहीं हमारे युवा साथी जो सोचत हैंगे के मनीष भैया या कार्यक्रम को लेके आत हैंगे
0: हाँ, और हमें मतलब जो जानकारी देते हैंगे। नहीं हाँ। नहीं जो ही मतलब है कि तुम हमें जो क्या पहुंचा रहे हैं कि जो कार्यक्रम तो हमारा है हम ही अपने साथी इनके बीच में लेके आऊ थे तो आज जी कैसे पहले भूल गई ई बात को तो मैं बुरा लगो हुज्जे से तुम बीच में हमारी बात काटन लगे।
1: नहीं ऐसा नहीं है बात और हम अपने साथियों को बड़ी खुशी होते हैगी जब हमारे साथी हमसे जुड़ के पूछत हैंगे कि भाई साहब ये कार्यक्रम सुन के हमने अपने जीवन में बदलाव कर रहे को काहे से कई वर्ष हो गए हैं 2008 से जब हम लोग चला रहे कार्यक्रम को और 2008 के बाद हमने जो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तैयार करी है थी वह रूपरेखा हमारे श्रोता साथियों ने जो अपने सुझाव दिए थे उन्ही सुझाव के आधार पर हमने जो रूपरेखा तैयार करी थी। अब जैसे हम होंगे कामयाब कार्यक्रम हम तो हुए ही कामयाब लेकिन हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे चाहे वो व्यवसाय हो।
0: अरे बस मनीष भैया बस बहुत ज्ञान देते आप इतनो ज्ञान जब बोलत हैंगे तो ऐसा लगत के कितु बैठ के और बढ़िया ज्ञान को भंडार भरो हुए और बोलेत हुए। अब तना बता तो दो कौन सो कार्यक्रम लेके आए हैं।
1: जो कार्यक्रम को नाम है मित्रों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम और जहाँ मैं अपन सुनते हैं छोटो काम बड़ा मुनाफा।
0: ये यानी के भी को मतलब है कि छोटो काम करो और मुनाफा बड़ो कमाओ।
1: हाँ और जब कार्यक्रम में हम जैसे हम कामयाब कार्यक्रम रखेंगे तो उन कार्यक्रम में हम अपने साथियों को चाहे वो जैसे अपन नौकरी करवे जा रहे हैंगे
0: हाँ।
1: तो नौकरी के लाने कैसे इंटरव्यू दें हमारे साथी बाकी लाने भी उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होते हैं व्यक्तित्व विकास जो रहते हैं यदि आपके पास अपने बोलने की क्षमता नहीं है आप जैसे इंटरव्यू देने जा रहा है तो आप हिचकिचात होगे कैसे बहुत ज्यादा समय लगा था जी चीजन को सीखने में। यदि आप किसी के पास बैठे हो उनका सवाल का है उसका जवाब कौन तरीके से देना है वो तो नौकरियन में जी चीजें हमें विशेष तौर पर ध्यान रखो चाहिए तभी हमारा व्यक्तित्व निखरे है वो और तभी हम आगे बढ़ सके तभी हमने जो कार्यक्रम को नाम रखो तो हम होंगे कामयाब एक दिन।
0: लेकिन जो तो बताओ कि अबे अपन का सुन रहे हैंगे और आप बता की के बारे में रहे।
1: नहीं हम कामयाब कार्यक्रम के बारे में बता रहे
0: हैं मतलब हमारे बहन को एक फोन आ रहा है बता दो।
1: चलो अपनी बहन को एक फोन आ रहा है जी बे का सलाह दे रही है इसको सुना थे कैसे हमारे जी बहुत अच्छे साथी हैंगे एक चीज हम एक बारे में बताबो चाहते हैं।
0: फोन तो उठा लो पहला वो।
1: नहीं हम बिल्कुल उठाए ले रहा है फोन हम अपने साथियों को बताबो चाहते हैंगे के व्यवसाय करवो और व्यवसाय के बारे में समझवो ये बहुत बड़ी चीज रहती है। जैसे अपन किसी बड़े व्यवसायी के बारे में या सफल व्यवसायी के बारे में बात करते हैंगे तो वास्ते जो सीख मिलत हैगी उनके जो अनुभव रहते हैंगे उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहेंगे।
0: अब फोन कटगा आप काय में से उठा रहे
1: हैं। चलो हमारे संगे टीकमगढ़ से रूपा जी जुड़ रही हैं चलो उनसे बतकाओ अपन कर लेते हैं तो उनके अनुभव को साझा कराते हैं।
0: तो बात तो हम ही करें आप खो ना करें हम
1: चलो आप ही कर लो भैया रूपा जी को फोन है वो आप ही बात
0: हाँ ठीक है। हेलो नमस्ते
2: नमस्ते रूपा रानीपुरा से जिला टीकमगढ़ से अभी वर्तमान में हम गांव में सिलाई सेंटर टीकमगढ़ से आया टीचर अभी सिलाई सेंटर का काम चल रहा है इसमें कपड़ा भी आए हुए तो कपड़ा की सिलाई चल रही है सिलाई सीखेंगे अब।
0: अच्छा यानी कि आप सिलाई का काम कर रही हैं तो सिलाई का काम आपने कहाँ से सीखा है कहीं प्रशिक्षण लिया था क्या?
2: हाँ जिला टीकमगढ़ में हमने केंद्रीय टीकमगढ़ प्रशिक्षण में सेंटर सिलाई खुला हुआ था वहाँ पे हमने एक महीने सिलाई सेंटर सीखा वहाँ से फिर हम गांव में आ गए रानीपुरा गांव में वहाँ से फिर सिलाई सेंटर खुला तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके सिलने लगे फिर तो पैसे भी मिलने लगे
0: जी
2: और यहाँ पे अपने रोजाना आते जाते हैं
0: जी। तो रूपा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने सिलाई सीखी है यानी कि आपने ट्रेनिंग ली है उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा क्या?

0: से आपने उसमें अप्लाई किया, कहीं से जानकारी आपको मिली तो वो कहाँ से मिली?
1: हाँ वैसे गांव गांव के थे आदमी जो जिन्होंने सिलाई सेंटर खोला ना समूह से, उनसे
0: जी
1: हमने संपर्क किया तो फिर उन्होंने बुलाया, उनके बारे में जो कुछ लगा कागज वगैरह नाम सारा कुछ लगा के फिर बस यहाँ से हमने शुरू किया काम। तो टीकमगढ़ में हमने सिलाई सेंटर सीख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। फिर एक महीना हमें टीकमगढ़ में सिलाई सेंटर सीखने का मौका मिला, फिर एक गाँव में आ गए, तो बस ऐसे ही आगे बढ़ रहे। हमें बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तो आपने जब अप्लाई किया था वहां पे कुछ फीस वगैरह आपकी ली गई थी क्या?
1: नहीं फ्री में सीखा, नहीं
0: अच्छा, कोई पेमेंट नहीं हुआ था आपका, मतलब पैसे नहीं
1: कोई
0: लगे थे?
1: नहीं।
0: अच्छा, तो रूपा जी आप इससे पहले, सिलाई सीखने से पहले क्या करती थी?
1: कुछ नहीं, गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में खेती किसानी करते रहते हो, गांव में कुछ नहीं है क्या, कुछ काम ही नहीं है, मजदूरी कहीं लगती नहीं है, बस बैठे ही है खाली घर में।
0: अच्छा, तो आपको क्यों लगा ये कि हमें सिलाई सीखना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होगा?
1: हमने इसलिए सिलाई सीखना चाहिए ताकि हमें 2 पैसे मिलने लगे, कहीं बाहर ना जाए, हम मजदूरी करने घर ही में रहे, बच्चों को संभाले, बच्चे स्कूल से पढ़े और गांव में रहे, घर में रहे, बस 2 पैसे मिले, हमें 2 पैसे आएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना खर्चा चलाएंगे, घर से बाहर ना कहीं जाना पड़े।
0: बिल्कुल, जो आपकी सोच है बहुत अच्छी लगी, और साथ ही साथ हम ये कहना
1: हेलो
0: चाह देंगे कि अभी जो आप काम कर रही हैं इसमें आपको कितना क्या मुनाफा, जिसको कहते हैं, कैसे हो जाता है?
1: वैसा हो जाता है, दिन में ज्यादा कुछ नहीं, वैसे फिलहाल हमने फीस सिले हुए, दिन में 1-2 बिलो सिले तो बन जाते हैं, 60-65 रुपए दिन के हो जाते हैं, तो महीने पे जोड़ लो कितने होते हैं बस।
0: अच्छा जी, तो दिन के 60-65 रुपए आपके हो जाते हैं, तो आपको मतलब लगता है कि आपके परिवार में चलाने के लिए कुछ जो खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत मदद तो आपको मिलती होगी इससे?
1: हाँ फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे,
0: अच्छा, आगे
1: बताए।
0: बढ़ाएंगे।
1: हाँ
0: जी बिल्कुल,
1: भोपाल से भी आए थे अधिकारी लोग, बता रहे थे कि अभी करो फिर पैसे बढ़ाएंगे।
0: अच्छा, तो अभी मतलब जितना काम आप करती हैं उसका ही पेमेंट मिलता है कि महीना में जो पेमेंट होता है वो आपको मिलता है?
1: ऐसे महीने में अभी मिला तो नहीं है, पर सुनवाई है अभी तो। ऐसी पुराने चीज थी ना, उन्हें सिलाए, जैसे पैंट थे, शर्ट थे, इन्हें अब नए कपड़े आए हुए हैं, हम बता रहे थान के थान आए हुए हैं, उनमें से बनाएंगे, जैसे टीकमगढ़ में आए हुए थे उनमें से कपड़ा सिलने के लिए, सीखने के लिए थी, काट के दिए थे उन्होंने।
0: जी, कैसे मतलब बाहर से जो कपड़े आते हैं वो सिंपल थान के कपड़े रहते हैं, फिर आप लोग उसको डिजाइन करते हो यहाँ पे? अच्छा, फिर इसकी जो मार्केट है कहाँ पे, आप लोग खुद सेलिंग करते हैं या फिर जो कपड़ा आपको देते हैं वही लोग लेके जाते हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं आप।
1: इसमें कोई लोग हमें देते हैं कपड़ा तो हम उसे सिल के फिर उन्हीं के पास छोड़ देते हैं, ताकि वे बाहर से कपड़ा लाते हैं, झांसी से सुनवाई है, झांसी से कपड़ा लाए हैं।
0: अच्छा, झांसी से कपड़ा आता है आपका और वो खुद ही आके आपके ले जाते हैं तैयार किए हुए कपड़े?
1: हाँ, तैयार किए हुए कपड़ा ले जाते हैं।
0: अच्छा रूपा जी, बहुत बढ़िया काम है ये आपका तो। और साथ ही साथ ये आप अकेले सिलाई करती हैं या फिर आपके साथ और भी कुछ महिलाएं या
1: नहीं
0: लड़कियां?
1: है, 10-12 महिलाएं हैं साथ में मिलके सारी करती हैं।
0: अच्छा, सारे लोग करते हैं सिलाई का, तो एक समूह में आप लोग काम कर रही हैं अभी?
1: हाँ, समूह वाली भी है, कुछ बिना समूह वाले हैं, समूह में मिलके काम कर रहे हैं हम लोग सारे मिलके।
0: जी बहुत बढ़िया, आपकी जो पहल है बहुत अच्छी लगी, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका आगे का क्या प्लान है इसमें और क्या करना चाहती हैं, आपकी योजना क्या है इसमें?
1: आगे ऐसा है कि अपने धीरे धीरे करके सिलाई सेंटर के बाद फिर आगे अपने घर में भी कुछ कपड़ा लाओ, अपने घर में भी करे, ताकि गांव वालों को भी आए तो अपने 2 पैसे गांव के भी बचे और 2 पैसे अपने सिलाई सेंटर से भी बचे, तब परिवार का गुजारा हो सकता है।
0: जी जी बिल्कुल रूपा जी, आपने जो बातें हमें बताई हैं बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हम एक चीज और थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये कर रही थी सिलाई का काम आपने शुरू किया, तो क्या क्या परेशानी आपको आई? क्योंकि देखो कोई भी काम करते हैं तो परेशानी तो आती है।
1: परेशानी तो आती है वैसे दीदी,
0: जी, तो आपको ऐसी कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: हमें ऐसे जैसे हमें आता नहीं है तो कोई काम करना नहीं आता, जैसे शुरू शुरू में हमने सिलाई सेंटर में हमने पूछा कि कपड़ा कितना नाप का होता है, तो हमने पूछा सब मिलके के, हमने सर से पूछा या मैडम से पूछा जो हमें सिखाती हैं,
0: जी
1: उनसे उनसे पूछा हमने ये कपड़ा कितने मीटर का होता है।

0: में तब हम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे हमें नॉलेज हुआ कि हम इन कपड़ों को ध्यान में रखें।
1: जी
0: कल जाके हम बाजार में ले तो सके, अपन को लेना है तो कल बाजार में ले तो सके। हाँ
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अपन को पूरी जानकारी खुद ना हो उस चीज के बारे में तो हम बाजार में जाके नहीं ले सकते।
0: नहीं ले सकते ना, फिर धीरे धीरे करके बस हमें अपने जैसे मशीन ली तो मशीन को भी ध्यान में रखना, ताकि कल बाजार खराब हो जाए कोई भी चीज तो बाजार में जाके हमें लेने पड़ जाए, या हम ना जाए दूसरों को बता तो सके उसके नाम वगैरह सब।
1: जी
0: तो बहुत सी परेशानी हुई ऐसे, हमें जानने में बहुत भी कठिनाई आई। हमने आगे चल के दूसरों आदमी से पूछा हमने कि
1: जी
0: ये चीज क्या है, तो
1: जी
0: हमें जानकारी हुई।
1: जी रूपा जी, तो जब आपने सिलाई 1 महीने सीखी है तो आप 1 महीने में क्या परफेक्ट टेलर जिसको कहते हैं आप सिलाई करने लगी थी क्या, या फिर
0: नहीं
1: इससे
0: एक
1: ज्यादा
0: महीने में
1: समय
0: तो नहीं
1: लगा?
0: किया अभी, नहीं, 1 महीने में नहीं हमने किया,
1: जी
0: अभी चल रही, शुरू चल रही, अभी सीख रहे हैं अभी। अब कितने फिलहाल हमने 1 महीना कौन था, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने गुजर गए
1: अच्छा, 3 महीने
0: अभी
1: आपके
0: सीख।
1: गुजर गए हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो आप परफेक्ट बना लेती हैं।
0: हाँ वैसे सलवार है, कुर्ती
1: जी
0: है, ब्लाउज है,
1: ये
0: बस
1: चीजें
0: यही दो
1: आप बना
0: तीन,
1: लेती हैं।
0: हाँ यही दो तीन चीजें बना लेते हैं,
1: अच्छा, इसमें आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है?
0: अब नहीं पड़ती, बस पहले पड़ती थी अब नहीं पड़ती किसी की हेल्प की।
1: अच्छा, तो गांव में जब आपने सिलाई सेंटर खोला है, मतलब खुला हुआ है, आपके गांव में इस चीज की मांग है ज्यादा से ज्यादा के लोग आएं और आपके पास कपड़ा सिलवाएं, या फिर सिर्फ आप बाहर का ही माल लेकर सिलती हैं?
0: नहीं अभी तो वैसे बाहर का माल है, पर गांव में घर घर टेलर है तो
1: अच्छा
0: अभी तो कोई नहीं आता, अब आगे चल के जो आएगा देखा जाएगा, ना आएगा तो सब घर में घर होगा टेलर, घर घर अपना काम कर रहा है। तो हम सोच रहे आगे चल के हम अगर सीख जाए तो फिर हम कहीं शहर में जाके दुकान लगा सकते हैं, मशीन रख सकते हैं, ताकि हमें आगे बढ़े।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी रूपा जी। इससे हमारी और जो महिलाएं सुन रही हो उनको भी लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले जब सिर्फ घर का ही काम करती थी, आप कैसे, आपके मन में ये दिमाग में आइडिया आया कि हम सिलाई करेंगे, आपको पहले से इच्छा थी क्या?
0: हाँ पहले से थी, हम पहले से सोच रहे थे, पहले से हमने मशीन भी रख ली थी, तो हमारे पास कपड़ा नहीं आता था तो हम अपने घर के पुराने कपड़े काट कूट के अपने सिल के रहते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़े। लेकिन बस दीदी एक बात और बता, कि हर गांव में ऐसा क्यों होता है कि आदमी आगे ना बढ़ पाए? अगर घर ही में है ना इंसान तो घर ही का घर ही में नहीं आगे बढ़ने देता, ये सबको भी आप बता दो। आप हमारी बात जैसे रेडियो पर चल रही तो सुन भी रहे होंगे
1: जी
0: तो, लेकिन क्यों घर घर में ऐसा होता है, इसका निश्चय आपको करना पड़ेगा वर्षा दीदी, इसको आगे बढ़ाओ कि घर घर में क्यों बुराई, और सब अच्छे
1: जी
0: जो है एक घर में सब सारे मिलके चले।
1: जी बिल्कुल, आपकी
0: एक
1: कहने
0: वैसा
1: का
0: हमने
1: मतलब है
0: भी,
1: कि महिलाएं, बहुत सी ऐसी हमारी जो बहनें हैं इस समय रेडियो सुन रही हैं, उनको ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि उनको आता सब है लेकिन वो करना नहीं चाहती, या तो फिर उन्हें परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता है।
0: नहीं बस यही बात है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाती है।
1: जी, तो आपके हिसाब से जब आपने सपोर्ट की बात की है परिवार की, तो आपको कितना सपोर्ट मिला आपके परिवार से?
0: हमें तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं मिला, हम तो परेशान है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे चल के हम समझा रहे हैं आगे हमें बढ़ाओ, ताकि हम 2 पैसे कमा सके, हम कहीं कहाँ जाएं, बच्चे पढ़ाई में कहाँ जाएं गांव छोड़ के,
1: जी जी
0: बताओ।
1: बिल्कुल, गांव छोड़ने की बात तो आपकी बहुत अच्छी लगी कि गांव छोड़ के कहीं नहीं जाना है हमें, अपने ही गांव में अगर हमें कुछ काम ऐसा मिलता है जैसे कि आप सिलाई सेंटर करती हैं, ऐसे और भी कई कार्य हैं जो आप अपने गांव में रहकर ही कर सकती हैं, और ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने परिवार का इसमें सहयोग कर सकती हैं।
0: सकते हैं, लेकिन परिवार आजकल साथ ही नहीं दे रहा, तो बताओ ऐसे पता नहीं इंसान कैसे कैसे हो जाते हैं, साथ ही नहीं दे रहा है तो सोच रही है आगे ना बढ़ जाए।
1: जी रूपा जी, आपकी जो बातें आप हमें बताई हैं, हमारी साथियों को बताई हैं, बहुत अच्छी लगी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातें सुनकर हमारी जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं तो वो हमें जरूर बताएं हमारे नंबर पे, और अपनी आवाज हमें, हम तक पहुंचाए, ताकि हम भी दूसरों तक पहुंचाएं उनकी आवाज के। देखिए, ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
0: कर सकते हैं इसलिए सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच है बरसा बहन, गलत सोच है कि ताकि आगे सोचते कि ये बढ़ ना जाए आगे, यहीं की यहीं रह जाए, सोच
1: जी
0: गलत है, आगे बढ़ने की कोशिश करते पर बढ़ने को आगे नहीं देते ना।
1: देखिए रूपा जी, एक कहावत आप

0: सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। अपने मन को कभी कमजोर मत समझिए, खुद को किसी से कम मत समझिए, आप सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते हिम्मत मत हारिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। जी रूपा जी, चलते चलते एक लास्ट सवाल है आपसे, जाते जाते हमारी जो बहनें हैं इस समय आपको सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
1: उनके लिए बस यही, कोशिश करते रहे, हार ना माने, बस आपने जो कहा बस हिम्मत बढ़ाते रहे, पीछे ना हटे। लड़का लड़की कहते हैं लड़का लड़की एक समान
0: जी
1: बराबर है, लेकिन हम भी वो भेदभाव नहीं करते कि लड़का लड़की एक समान नहीं है, है।
0: जी बिल्कुल रूपा जी,
1: आगे बढ़ते रहे बहन भाई, सब मिलके चलते रहे, और घर का और बाहर का भी जो अपने करने में मदद दे सके कोई, तो उनसे और संपर्क करें, हम भी आपको बता देंगे।
0: जी बिल्कुल रूपा जी, आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतना समय हमें दिया, हमारे साथियों के लिए इतना वक्त निकाला कि आप किस तरह से काम कर रही हैं, सिलाई सेंटर आपका कहाँ है, और बहुत ही खास बात जो हमारे आज के कार्यक्रम में है कि आप इतनी दूर की होने के बावजूद भी आपको लगा कि हम रेडियो बुंदेलखंड में अपनी आवाज को दें, ताकि महिलाएं जो सुन रही हैं उनको थोड़ा सा उत्साह प्रेरित हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अच्छी बात, धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: काहे बार साथ हम तो इतनी नौनी अच्छी बातें कर लेती हैं, और रूपा जी ने कितने अच्छे अनुभव आपको बता दें, आपको शायद हमें देखा पहले से बिल्कुल पता हो ये कि रूपा जी बात करें और व्यवसाय के बारे में बताएं।
0: हाँ बस तो
2: हम सोच ही रहते हम कमे आज कौन सा व्यवसाय दें, कौन सा व्यवसाय दें, और हमारी रूपा बहन ने बताई रही कि हमने जो हम अनुभव जो राय है उनके कैसे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कछु भी चीज को यदि अपन व्यवसाय को स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कर रहा है, तो उसके लाने ट्रेनिंग की जरूरत पड़ा थे, उसके नाना मार्केटिंग की जरूरत पड़ा थे। ये सारी बातें जो रूपा जी ने अनुभव अपने बताए हैं कि उनने कैसे कैसे एक एक सीढ़ी खो रख के आज आगे बढ़ गई है, और उनने किस तरीके से सिलाई को काम सीख के आज भी अपनों परिवार को भरण पोषण कर रही, वाह धन्यवाद।
0: अरे मनीष भज्जा, सबसे बड़ी बात पता का हैगी, जा हैगी कि अपन और सीख तो ले थेंगे, मतलब जैसे कहता हूँ सुनी क्या रे वो ते जो चीज से करे हमें तो सीख भी जाना, सीख भी वो बहुत है ना, नई शुरुआत में तना एक जाबे को चस्का लगो रहा थे, चले तो जा सीख भी, लेकिन वो काम को कैसे हम अपनो व्यवसाय बना सकत, कैसे उसे अपनी आजीविका चला सकते, जो बहुत कम लोग होते जो सीख पाएंगे। तो काहे कि रूपा जी ने जो हमें बताई थी कि टीकमगढ़ में जो आरसीटी सेंटर चला थे वो उके माध्यम से कम होते ज्यादा नहीं तो 30-40 औरतें उस समय पे ट्रेनिंग उनके संगे ले रही थी, लेकिन अगर बात करें कि उखो कंटिन्यू आगे कीने करो तो उनमें से बहुत से बहुत 10-15 महिलाएं ऐसी हैं थी जो कि अपने घर जब वापस गई और भी सिलाई को काम कर लगी हैंगी। तो कैबे को मतलब जो है वो कि कोनो भी काम अगर अपन सीखत हैंगे और करबे के उद्देश्य से अगर सीखत हैंगे तो उखो जरूर सीखो, क्योंकि आपने वो एक महीना या चार दिना जो भी आपको समय हतो वो समय आपने वो ट्रेनिंग में दो है, और वो समय आपको बहुत कीमती हतो, महत्वपूर्ण हतो। तो इसे भैया अपन अपनी आजीविका के बारे में तो सोचते हैंगे, वो सोचवे के संगे अपन कैसे एक छोटो सो काम करके एक बड़ो सो मुनाफा कमा सकत हैंगे। इतने अगर अपन बात करें मनीष भैया के अपनी जो बहने होती खास तौर से भी दो चीजन को ज्यादा पसंद करती हैं, ये दो या तीन चीजन को बहुत से बहुत, एक तो हो जाते है वो कि सिलाई को काम, दूसरो ब्यूटी पार्लर, तीसरो उन्हें कढ़ाई बुनाई को काम अगर अच्छा लगत है वो तो वो भी वे करती हैंगी। तो महिलाएं अक्सर इन दो चीजन पे या तीन चीजन पे काया अटकती, हम तो कहत आप और भी बेहतरीन काम कर सकती, जैसे अचार बरी को काम है, अगर आप बहुत अच्छी तरीका से अचार बरी पापड़ है और या फिर जी मसाले होते ही अगर आपको जो ही बनावो आते हो और बहुत अच्छी तरीका से आप बनावो जानती हैं, तो उनके छोटे छोटे पैकेट बना के आप मार्केट में एक अपनी खुद की ब्रांड आप तैयार कर सकती हैं, ये अगर आपको अच्छी तरीका से बनावो आते हैं। तो केवल दो ही चीजन पे ना अटको कि हम केवल सिलाई या ब्यूटी पार्लर करेंगे, आप और भी ज्यादा काम कर सकती हैं और कई प्रकार के काम आप कर सकती हैं।
2: अरे ज्ञान की देवी, अब तो नक रुक जाओ और हमारे साथियों को तनक सांस लेन दो और जो लोकगीत सुनन दो, कैसे इतनी ज्ञान ज्ञान ज्ञान दे चली जाओगी, तो तो हमारे साथी कह के हाओ ज्ञानी बाबा लोग आ गए हैंगे।
0: हाँ, मतलब तुम तो मैं दोस्तों का छू नहीं,
2: नहीं,
0: तुम
2: नहीं अपन एक बढ़िया अपन भी थोड़ो विराम ले लेते हैंगे और अपन सुनवात हैं अपने श्रोता साथियों को जो नौ नौ सौ गजल खो अपन गजल खो सुनेंगे और गजल के बाद साथियों फिर ये तनक आपकी हमारी मुलाकात जा कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में।

0: तो हमारे सब श्रोता साथी अब हरीश दर्द जी की आवाज में बढ़िया सी गजल को सुन रहे थे, और अब हमें लगा थे गो मनीष भैया जो ज्ञान तो तुम्हें दे सकत हो गए, कहे गया हम बोले सो फिर कहते कि ज्ञान दे रही
1: नहीं, अब हम भी ज्ञान नहीं देंगे,
0: नहीं
1: साथी
0: दो।
1: अनखों बस पूछ वो चाह रहे हैंगे कि जो कार्यक्रम हम लोग बना के आप लोगों तक पहुंचा रहे हैंगे, तो कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैंगे, कैसे जब तक आप लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आए, कैसे एक जो मंच है वो रेडियो बुंदेलखंड के ऐसा मंच है वो जहाँ पर हमारे श्रोता साथी अपनी बात को रख सकत हैंगे और अपनी बात दूसरे तक पहुंचा भी सकत हैंगे। तो अपन ये चीजें आपको बताते हैंगे, जो बातें आपको बताते हैंगे, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हो, चाहे युवा साथियों को कैरियर से जुड़ी बातचीत हो, चाहे वो आजीविका से जुड़ी बातचीत हो, तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, सारी बातें जो रहेंगी, उनको यदि हमारे श्रोता साथी यदि मैसेज भी करें या फिर व्हाट्सअप करें या फिर फेसबुक पे भी हम और रहेंगे, और फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उनके बारे में। और खास तौर पर आज को जो कार्यक्रम हमने जय के लाने बना है गो, जैसे रूपा जी ने अनुभव दिए हैंगे, तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैंगे। यदि आप सफल व्यवसायी हैंगे, आपको लग रहा है गो कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है गो कि आपको मार्गदर्शन की जरूरत है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैंगे।
0: बिल्कुल यही प्रकार है, और हम वही सोच रहे थे कि ज्ञान की बात खुद कर रहे थे, और देखो इतनो मना करत करत आखिर में ज्ञान दे ही दो। तो साथियों सीधी सी बात नहीं कर सकते कि भज्जा अब हम जाते हैं ये कार्यक्रम से, और आपको अगर कोई संपर्क करने हैं तो लाना हमारा नंबर जो है वो।
1: हाँ, और साथ ही जरूर फोन लगाएं या फिर फेसबुक पे फॉलो करें या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।
0: अरे मनीष भैया सुनो सुनो सुनो सुनो, तुमने ऐप के बारे में काहे नहीं बताओ? और
1: ये हमारे श्रोता साथियों के पास यदि
0: जाना थे
1: है, नहीं, जानत तो हैंगे, और हम एक बार फिर से कह वो चाहते हैंगे कि रेडियो बुंदेलखंड आप इंटरनेट पे भी उपलब्ध है वो, जहाँ पर रेडियो नहीं पहुंच पा रहा है वो रेडियो सेट के माध्यम से, वहां पे है इंटरनेट की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। रेडियो बुंदेलखंड वहां भी उपलब्ध है वो, और आप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पे जाने हैं वो, और प्ले स्टोर पर रेडियो बुंदेलखंड जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप रेडियो बुंदेलखंड को लोगो उपलब्ध पाओगे, बाखो डाउनलोड करो और चाँ जेते बैठ के हैं, यदि आपके पास इंटरनेट है वो चांद उन छिड़िया में बैठ के सुन सकते हैंगे और अपनी ज्ञान की बात अनखों सुन सकते हैंगे।
0: तो केवल साथियों ज्ञान की बातें सुनबे नहीं, मनोरंजन की बातें भी सुनबे के लाने, आप डाउनलोड जरूर कर बे ऐप, काहे कि अपने श्रोता साथियों की हर बार जैसी शिकायत रहती कि रेडियो के नेटवर्क नहीं आ रहे, तो एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है अपने फोन में प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड कर ले रेडियो बुंदेलखंड को ऐप, और फिर अपन जितने चाहे बैठ के ई कार्यक्रम को सुन सकते हैं सुबेरे 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो अब भैया देखो ज्यादा ही टाइम हो रहा हो, काहे की अब हमें चलन दो, और फिर ये आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: तहजीब है उसको किस अंदाज में हमारी एक कोशिश है। गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं,
1: गंगा जमुना की लहरों में प्यार के धारे बहते हैं।
0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं,
1: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर सब रहते हैं।
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
1: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं,
0: होली ईद दिवाली मोहर्रम मिलजुल कर सब करते हैं।
1: जन्नत रंग

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और खेत खलियान कार्यक्रम में खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथियों, काफी दिनों से हम इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे किसान साथी आने वाले समय में अपने कृषि में बदलाव की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से खेती किसानी में बदलाव किया जाए ताकि उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक से अधिक हो सके। क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं, जब तक हम कुछ नया नहीं करते हैं तब तक हम जो हम लागत लगाते हैं और उसका खर्चा होता है वो मिला जुला रहता है। तो हमें ऐसी खेती, ऐसी पद्धति के लिए आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा, समझना होगा ताकि हम एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं अपनी खेती किसानी में। हमारे बहुत से युवा साथी जो खेती पर निर्भर भी रहते हैं और ख़ास तौर पर हमारे किसान साथी खेती पर निर्भर रहते हैं और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम दो फसलें वो करते हैं कि जो ग्रीष्मकालीन फसल रहती है उसको भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये दो फसल, एक तो गेहूँ की फसल करते हैं, एक धान और मूंगफली की फसल करते हैं। तो काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि दो फसलों में किस तरीके से गुजारा चला जा सके। तो आज एक नए विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और ये बड़ा समझने वाली बात होगी किस तरीके से इस पद्धति को अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग ला सकते हैं। कई हमारे ऐसे जागरूक किसान भी हैं जो नई नई पद्धति से अपनी खेती को कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। खासतौर पर अगर इस तरीके की हम तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में, आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, हमारे पैदावार भी अच्छी बढ़ेगी और हमें मुनाफा भी अच्छा होगा। तो आइए पहले सुन लेते हैं इस चर्चा को।

0: एरोपोनिक खेती एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी के इस्तेमाल के बिना फसल को उगाया जाता है। इस तकनीक के जरिए पौधों को उगाने के लिए हवा या धुंध का इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि में पौधों की जड़ों को हवा में लटका दिया जाता है और पोषक तत्वों के घोल को सीधे उनकी जड़ों पर छिड़का जाता है। क्योंकि इसमें मिट्टी शामिल नहीं होती, इसलिए मिट्टी जनित रोगों और कीटों का खतरा काफी कम हो जाता है। एरोपोनिक खेती ग्रीन हाउस में की जाती है, जिसमें प्रकाश, तापमान और आर्द्रता सहित बढ़ती परिस्थितियों पर सटीक नियंत्रण संभव हो पाता है। एरोपोनिक विधि से उगाए गए पौधे अक्सर मिट्टी में उगाए गए पौधों की तुलना में तेजी से बड़े होते हैं।
1: ये जो टेक्नोलॉजी है एरोपोनिक्स, ये जो नासा है, जो अमेरिका की एक संस्था है नासा, उसने इसके ऊपर कुछ साल पहले काम करवाया था अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स, उनके वैज्ञानिक जो स्पेस में जाते हैं, तो उनका सोचना ये था कि स्पेस में, क्योंकि उनको ताज़ा भोजन, खासतौर पत्तेदार जो लेटस वगैरह है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उन्होंने ये काम शुरू किया था कि थोड़ा सा पानी उनके पास होगा, कुछ बीज होंगे, और वहाँ पे जो जड़ों के ऊपर स्प्रे करके वो खुराक दे के, तो इस तरह से कुछ ताज़ा भोजन पैदा कर सकते हैं अपने वैज्ञानिकों के लिए। उसी जो प्रिंसिपल को, उसी जो एक तरह सा जो एक साइंस का प्रिंसिपल है, उसको इस्तेमाल करते हुए ये एरोपोनिक्स का विस्तार, इसका जो कहिए और साइंस इसके ऊपर की गई है, खोज की गई है, ताकि उसी जो प्रिंसिपल को, उसी विधि को आलू के लिए यूज कर सकें, आलू के लिए इस्तेमाल कर सकें।
0: एरोपोनिक खेती की तकनीक दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हो गई है। खास तौर पर शहरी वातावरण या उन स्थानों के लिए ये तकनीक आदर्श मानी जाती है जहां स्थान सीमित है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपके पास अपने छोटे से बगीचे या छत पर कोई जगह है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने भोजन को उगाने के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको खेती के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिट्टी आधारित खेती की तुलना में खाद्य उत्पादन की यह टिकाऊ विधि 80-90% कम पानी का उपयोग करती है। मिट्टी की अनुपस्थिति, हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की यह तकनीक खेती के भविष्य के रूप में उभर रही है।
2: कृषि के क्षेत्र में कृषि संस्थानों और तकनीकी मार्गदर्शकों की जो भूमिका है वो हमेशा से ही काफी अहम रही है। नई मशीनों की बात हो या फिर आधुनिक तकनीकों की बात हो, इनके बारे में जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाने में इनका हमेशा से ही अहम योगदान रहा है।
0: एरोपोनिक का सीधा सा मतलब है हवा में उगना। एरोपोनिक सिस्टम में कोई माध्यम नहीं होता है, क्योंकि पौधों की जड़ें खुले जड़ क्षेत्र के वातावरण में स्वतंत्र रूप से लटकी रहती हैं। एरोपोनिक सिस्टम के विकास कक्ष को पानी, पोषक तत्व और हवा की आदर्श मात्रा प्राप्त होती है।
1: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, आलू, गेहूं और धान के बाद तीसरे नंबर पे जो फसल है, जो हम लोगों के भोजन का एक हिस्सा है, और बहुत मात्रा में आलू का हमारे खान पान में इस्तेमाल किया जाता है, और लगभग 60 मिलियन मैट्रिक टन्स, या ये कहें कि 600 लाख जो टन आलू इस कंट्री में, इस मुल्क में पैदा किया जाता है, और 60 मिलियन मैट्रिक टन का जो आलू जो पैदा करना है, तो लगभग 7-8 मिलियन मैट्रिक टन्स जो हमें बीज की जरूरत पड़ती है। इस बीज को पैदा करने के लिए जो रिवायती सिस्टम है बीज पैदा करने का आलू का, जो कि आज भी चल रहा है, जिसमें वैज्ञानिक लोग सबसे पहले ब्रीडर सीड पैदा करते हैं, उसके बाद फिर फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, और उसके बाद सर्टिफाइड बीज पैदा करके किसानों तक पहुँचाया जाता है। वो जो बीज है वो कई सालों से वो बीज बन रहा है, लगभग 40 सालों से बन रहा है इस कंट्री में, लेकिन वो बीज वैज्ञानिक लोग जितना बनाते हैं वो बहुत मात्रा बनाते हैं, पर पूरे कंट्री की जो, पूरे देश की जो बीज की जरूरत है उससे पूरी नहीं होती। तो जो सप्लाई और जो डिमांड है या मांग है, उसके बीच में बहुत बड़ा एक गैप है, गैप था, जो कि अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है एरोपोनिक्स टेक्निक के आने के बाद। तो उस बीज की जो कमी है बीज की, उसको पूरा करने के लिए दूसरी तकनीकें, जैसे कि टिश्यू कल्चर टेक्निक और एरोपोनिक्स टेक्निक, इसी तरह से एपिकल रूटेड कटिंग की जो टेक्निक है, जो और भी कई जो नई नई टेक्निक्स को साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया है।
0: मिट्टी की अनुपस्थिति में हवा या धुंध की उपस्थिति में पौधों को उगाने की तकनीक को एरोपोनिक्स के रूप में जाना जाता है। एरोपोनिक खेती का उपयोग कई प्रकार की फसलों को उगाने के लिए किया जा सकता है, जैसे सब्जियां, फल और फूल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र जालंधर के प्रमुख डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि इनके संस्थान में इस विधि से उच्च गुणवत्ता वाले सीड का उत्पादन किया जा रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि इस तकनीक की खासियत ये भी है कि सीड का उत्पादन अन्य विधि के मुकाबले बड़ी तेजी से होता है।
3: सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो कि कहेंगे कि वर्ल्ड रिनोन टेक्निक है, एरोपोनिक है। एरोपोनिक में हम जो डिजीज फ्री सीड बिना बीमारियों के अच्छी क्वालिटी का सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। उसका जो एक खास बात ये है कि वो सीड की जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब वो सीड बढ़ाना, वो बड़ा फास्ट है। अगर एक प्लांट से बहुत सारे ट्यूबर प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये एक एरोपोनिक टेक्निक है जो हमारे पूरे कंट्री में अभी फैली हुई है और जहाँ पे भी एरोपोनिक लग रहा है, लगभग हमारे ही जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके थ्रू ही वो वहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो ये हमारी एक वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स है।
4: आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1,00,000 से 100,00,000,000 की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 collateral सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।

0: तकनीक की संपूर्ण जानकारी होने से उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने में मदद मिलती है। बता दें आपको कि हमारे देश के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो भी आधुनिक तकनीकों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। एरोपोनिक तकनीक की बात करें तो इसके बारे में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
1: वैज्ञानिकों का मानना है कि गेहूं और धान जैसी फसलों में प्रति हेक्टेयर जितनी पैदावार होती है, लगभग उसके बराबर ही आलू में प्रति हेक्टेयर बीज गंध की आवश्यकता होती है। वहीं आलू में उत्तम गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता हमेशा ही आवश्यकता से कम रही है। ऐसे में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर आलू के बीज उत्पादन का प्रयास किया जाता रहा है। पारंपरिक विधियों द्वारा आलू के बीज तैयार करने में कई कई वर्षों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में कृषि संस्थानों द्वारा और वैज्ञानिकों की कठिन प्रयासों के फलस्वरूप आलू के बीज उत्पादन के लिए एरोपोनिक तकनीक को इस्तेमाल में लिया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से प्रति पौधा 40 से 50 छोटे कंद मिलते हैं। यह पारंपरिक आलू बीज उत्पादन की विधियों से संख्या में 10 से 12 गुना अधिक होते हैं। इस विधि में बीज कंदों को हर चौथे पांचवे दिन तोड़े जाने के कारण इनके आकार में समानता बनी रहती है। आवश्यकता अनुसार तोड़े जाने वाले आलू का आकार भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इनकी एक समान बिजाई करना भी आसान रहता है। एरोपोनिक में पौधों को हवा में ही उगाया जाता है, इस कारण मृदा जनित रोगों के होने की आशंका नहीं होती। खेत से प्राप्त होने वाले आलू बीज कंदों की अपेक्षा एरोपोनिक से बीज कंदों की प्रति पौधा पैदावार लगभग दुगनी प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों की उपलब्धता पर्याप्त एवं एक समान होती है। इस विधि में छोटे आकार के बीज आलू कंद होने के कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना भी सुविधाजनक रहता है। मिट्टी की तुलना में एरोपोनिक विधि में सिर्फ 5 से 10 प्रतिशत पानी और 10 से 15 प्रतिशत पोषक तत्वों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इस विधि को पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी आलू बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। प्रति कंद उत्पादन लागत अन्य विधियों की तुलना में अपेक्षाकृत 5 से 6 गुना कम आती है।
2: एरोपोनिक्स के एक ऐसा तरीका है कि जिसमें जो आलू का किसान है उसको बीज पैदा करने के लिए जो बीज चाहिए, जिसको हम प्री बेसिक सीड बोलते हैं, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में एक साल में एक पौधे से कई सौ पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, और वो जो टिश्यू कल्चर के पौधे हैं, ये एरोपोनिक्स की विधि से पहले वो मिट्टी में लगाए जाते थे, और वो जो एक पौधा था वो 6 से लेके 8-9 आलू के कंद पैदा करता है। टिश्यू कल्चर से पैदा किए हुए कंद को बोलते हैं मिनी ट्यूबर।

0: टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मिनी ट्यूबर। अब जरूरत यह थी कि वो मिनी ट्यूबर की जो पैदावार है वो बढ़ाई जाए, और उसको बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए इस टेक्निक जिसको एरोपोनिक्स बोलते हैं इसका इजाद हुआ। और वही पौधा जो टिश्यू कल्चर का पौधा था, जब मिट्टी में लगाया जाता था नेट हाउस में, नेट हाउस इसलिए कि उसमें कोई भी कीट पतंगा जैसे कि सफेद मक्खी चेपा ना आ पाए, सफेद मक्खी और चेपा और या दूसरे कीट उसमें वायरस रोग का फैलाव करते हैं, उससे बचने के लिए नेट हाउस में जो पौधे टिश्यू कल्चर के लगाए जाते थे। अब वैज्ञानिक लोगों ने ये सोचा कि उसी पौधे से कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें 6 से लेकर 8 की बजाय बहुत ज्यादा मात्रा में कंद बने, जो मिनी ट्यूबर ज्यादा बने। उसी सोच के तहत ये एरोपोनिक्स विधि का विकास हुआ, इसके ऊपर काम किया गया। बेसिकली जो एरोपोनिक्स जो है, ये दो अंग्रेजी का शब्द है एरोपोनिक्स, एरो का मतलब हवा, पोनिक्स का मतलब कोई भी आप पौधे को हवा में उगा रहे हैं। तो एरोपोनिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस में, जिसमें के आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, उधर पंखे चल रहे हैं और मेरे पीछे जो एक पैड सिस्टम है जिसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर पा रहे हैं।
1: जैसा कि हमने जाना, एरोपोनिक खेती में मिट्टी का उपयोग नहीं होता, इसके बजाय ग्रीन हाउस में तैयार किया जाता है। पौधों की जड़ें जमीन में नहीं होती हैं, बल्कि वे हवा में ही लटकती हैं। वैज्ञानिकों के सुझाव पर ग्रीन हाउस में एरोपोनिक फार्म तैयार किया जाता है। इसके बुनियादी ढांचे में LED लाइट, पंप, मिस्टिंग नोजल, हाइड्रोपोनिक नेट पॉट और अन्य आवश्यक उपकरण शामिल होते हैं। इस ढांचे में लगे फसलों पर एक विशेष तरह के नोजल द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है। पानी का मिश्रण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी पोषक तत्व बिल्कुल संतुलन में मिले होते हैं, जो कि आलूओं की बढ़वार में मददगार होते हैं। पानी का ये मिश्रण समय समय पर ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा फसलों पर छिड़के जाते हैं। वहीं ये रोटेशन में भी लगातार बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिससे लागत में भी कमी आती है।
0: जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एरोपोनिक्स में ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, और ये जो पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये ऊपर से तो सूर्य की रोशनी लेते हैं ग्रीन हाउस की शीट के बीच में से, और ये फसल जो आप देख रहे हैं इस तरह से है जैसे फैक्ट्री में बनाई गई हुई फसल हो। बहुत ही शानदार, बहुत ही तंदुरुस्त, बिल्कुल एक तरह के सपनों की फसल इसको कह सकते हैं। अब इसी का जो, इसके नीचे कोई मिट्टी नहीं है, जो हम लोग जो रवायती सिस्टम है फसल पैदा करने का, उसमें हमारी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती हैं। यहाँ जो ये जो बॉक्सेस बने हुए, ये सिस्टम बना हुआ है, इसमें नीचे बिल्कुल मिट्टी नहीं है और जो जड़ें हैं वो हवा में लटक रही हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये जो हवा में लटक रही जड़ें हैं उनको कैसे खुराक दी जाती है। आप ये देखें कि ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें जब हमने आलू तोड़ना है तो हम इस फसल को पूरा ऊपर उठा लेते हैं, जिस समय आलू की जो मिनी ट्यूबर की पिकिंग या हार्वेस्टिंग या तुराई होनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आलू जड़ें लटक रही हैं हवा में, और इसीलिए इसको एरोपोनिक्स बोलते हैं। और ये आलू लगे हुए हैं, ऊपर कंद लगे हुए हैं, तो हर तीसरे चौथे दिन इन जो जो कंद है, जैसे आज ये इनकी पिकिंग हो चुकी है, और नहीं तो हर तीसरे चौथे दिन इनकी पिकिंग, जैसे ये 2 से 3 ग्राम का आलू हो जाता है तो इसकी पिकिंग कर ली जाती है। और नीचे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली चलता है, हर जो सेट टाइम है 5-10 मिनट के बाद ये यहाँ से खुराक की स्प्रे ऊपर होनी शुरू हो जाती है। तो अभी जैसे ही टाइम आएगा इसके स्प्रे होने का, ये ऑटोमेटिकली स्प्रे होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप इस तरह से जड़ों को टच कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि इनमें कोई बीमारी तो नहीं है, इनका रंग कैसा है और इनका जो आलू नए बन रहे हैं या कितने बन रहे हैं, ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये जो एरोपोनिक्स है, हवा में जिसका होना हम कह सकते हैं, आप देख पा रहे हैं। अब ये आपके सामने जब स्प्रे होने का टाइम हो गया और इसके ऊपर जड़ों के ऊपर ऑटोमेटिकली जो वो सॉल्यूशन वो पानी स्प्रे हो रहा है, जिस पानी में सब तरह के जो पूरे जो जो तत्व है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, फेरस, मॉलिब्डेनम और जो भी कोई खुराक की जरूरत है उसमें पानी में घोल के रखी जाती है और ऑटोमेटिकली जो पंप है इसके ऊपर स्प्रे करता है हर 5 से 7 मिनट के बाद। तो इस तरह से ये एरोपोनिक्स किया जाता है और ये जो क्रांतिकारी जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इसमें ये जो जो मिनी ट्यूबर जिसको हम बोलते हैं तो ये एक साल में जैसे ये यूनिट आप देख पा रहे हैं तो इस यूनिट में 5 लाख ये मिनी ट्यूबर पैदा किए जा सकते हैं और इसी तरह जो बने हुए यूनिट हैं अलग अलग कोई 10 लाख कैपेसिटी का है, कोई 20 लाख कैपेसिटी का एक साल में प्रोडक्शन का ये सिस्टम है और ये सब कुछ भारतवर्ष में ये डिज़ाइन तैयार किया गया है। सब कुछ हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलके इसकी डिज़ाइनिंग की है, इसके प्रोटोकॉल सेट किए हैं और इसका कब फसल लगेगी, कौन सी लगेगी, कितनी दूरी पे लगेगी, कितने दिनों बाद आपने कौन सी खुराक इसको देनी है, ये सारा कुछ CPRI में पिछले 10 से 15 सालों में किया गया है।
2: हमारे देश का किसान बहुत जागरूक है, नई मशीनों के उपयोग की बात हो या फिर नई आधुनिक तकनीकों को अपनाने और उनके बारे में सीखने की बात हो, हमारे देश का जो किसान है हमेशा से ही जागरूक रहता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों से एरोपोनिक तकनीक की जानकारी हासिल कर हमारे देश के जो किसान है वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं।
1: भारत विकासशील देश है, हमारी वर्तमान सरकार देश को आगे बढ़ाने और खासकर कृषि के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मजबूती देने के उद्देश्य से काम कर रही है। केंद्र सरकार खेती के क्षेत्र में नई तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही किसान भाइयों को नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
0: किसान बंधुओं, हमने उधर एरोपोनिक्स में जो कि ग्रीन हाउस में लगा हुआ पूरा सिस्टम है हवा में आलू पैदा करने का, वहाँ हमने ये आलू आपने देखा कि इस तरह से हमने वहाँ से ये तुड़ाई करते हैं हर तीसरे चौथे दिन वैरायटी के हिसाब से। ये आप देख रहे हैं कि वहाँ जब जिस समय तुड़ाई होती है, पिकिंग होती है या हार्वेस्टिंग होती है उसमें उस समय इनका जो रंग है इस तरह से लगभग सफ़ेद रंग के होते हैं। अब क्या है कि ये जो आलू हैं जो ये मिनी ट्यूबर्स हैं ये इसी तरह से स्टोर में नहीं रख सकते 6-7 महीने के लिए 8 महीने के लिए, अब इनका छिलका पकाना पड़ता है, इनकी क्योरिंग करनी पड़ती है या इनको हम लोग कहें कि इनकी ग्रीनिंग करनी पड़ती है, इनको मजबूत बनाना पड़ता है। उस मजबूती के लिए ये सिस्टम बना हुआ है, इस सिस्टम में एक खास मात्रा में खास दिनों के लिए और मतलब लाइट देनी पड़ती है और लाइट में जब ये रखते हैं तो इस तरह से ये आलू जो है इनका कलर चेंज हो जाता है, इनका छिलका पक जाता है, ये सफेद से या तो हरे रंग के हो जाएंगे या फिर थोड़ा सा जैसे ये भूरा रंग है, ये डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है, किस्म कौन सी है। तो अब ये जो 8 से 10 दिन में ये इनका छिलका पक गया है और इनका पूरा अच्छे से ये जो मिनी ट्यूबर ये तैयार है आगे स्टोर में रखने के लिए। अब इस आलू को 2 से 3 डिग्री वाले स्टोर में यहाँ पे लगभग 7 से 8 महीने स्टोर किया जाएगा, तो वहां पे इसको रख दिया जाएगा और उसके बाद फिर इस आलू को निकाल के लगभग 20-25 दिनों तक रखा जाएगा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे और फिर इसमें पुंगराव आ जाएगा, इसमें जर्मिनेशन आ जाएगी और ये जो जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसको खेत में बोया जाएगा। खेत में बोने का भी विधि विधान है, एक टेक्निकी है CPRI की जिसको बोलते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, मतलब कब बोना, कब पत्ते काटने, कौन कौन सी उसमें दवाई का छिड़काव करना, कैसे फसल को कीट पतंगों से बचाना ताकि उसमें वायरस ना फैले। तो फिर ये जो G0 जिसको बोलते हैं या मिनी ट्यूबर बोलते हैं इसको खेत में जब लेके जाएंगे तो पहले साल ये होगा खेत में, पहले साल में बोलेंगे जनरेशन 1, मतलब पहली पीढ़ी उसकी फील्ड

0: जनरेशन वन, फिर अगले साल उसका दोबारा से नेक्स्ट अगले साल में जाएगा, जनरेशन टू होगा, फिर जनरेशन थ्री होगा, फिर जनरेशन फोर होगा। इस तरह से जो किसान है उसके पास बीज पहुंचने से पहले जी वन जनरेशन वन, जी टू जनरेशन टू, फिर जी थ्री, जी फोर, तो इस तरह से ये आगे सीड को बढ़ाया जाता है। बढ़ाने का ये है कि ये जो एक एक दाना है, जब खेत में जी वन बनेगा एक के 5-6 बन जाएंगे, जब ये जी टू बनेगा तो लगभग आप ये मान के चलिए 50 के करीब बन जाएंगे, जब जी थ्री बनेगा तो 50 को अगर 6 गुना करें तो 300 के करीब बन जाएगा, जब जी फोर बनेगा तो एक दाने से 1500, 1600, 1700 दाना बन चुका होगा। तो ये कह सकते हैं कि एक दाने से जी फोर के 1600-1700 दाने बन चुके होंगे, जो कि लगभग डेढ़ डेढ़ कट्टे के आसपास हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज कैसा है। तो इस तरह से ये जो बीज है एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन जो आलू की दुनिया में ला रहा है। जो किसान इससे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे उनकी इस विधि के आने से, ये एरोपोनिक की विधि और इसका जो टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी के साथ जो मिलान होने के बाद, जब ये मिनी ट्यूबर की मात्रा इतनी बढ़ रही है बड़ी तेजी से, अब हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसानों को पूरा जो बीज की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है, उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी।
1: एरोपोनिक तकनीक नई तकनीकों में से एक है। भारत में एरोपोनिक खेती सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है जिसने इस दशक में खेती में क्रांति ला दी है, जिसे लेकर हमारे देश के किसान भाई बेहद उत्साहित हैं। वे इस तकनीक के बारे में जानकर इसे अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हालांकि भारत में अभी एरोपोनिक को अपनाने की गति धीमी है, लेकिन किसान इस तकनीक को लेकर बेहद उत्साहित और इसे अपनाकर खेती करने के लिए प्रयासरत हैं।
2: एरोपोनिक सीड सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन से मैं गया था तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जे बढ़िया सीड बनाना है तो एरोपोनिक का ही सीड बनाओ। तो मैंने उनसे सीड परचेज किया तो मैं वो लगाया और तीजा साल हो गया है तो मैं चौथे साल में उसको बेचूंगा। जो भी फर्ज करो एक जो बंदा परचेज करेगा तो उसको पता चल जाएगा थानू कि इसकी कितनी ही यील्ड है।
1: एरोपोनिक खेती की तकनीक अपनी संभावनाओं की वजह से दुनिया भर में बेहद

0: अवगत हो रहे हैं, जैसा कि हमारे देश में भूमि की कमी है और इस कमी को देखते हुए एरोपोनिक तकनीक में खेती का भविष्य नजर आ रहा है। इस तकनीक से जमीन की कमी को पूरा किया जा सकता है, साथ ही उपज भी कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। एरोपोनिक तकनीक की मदद से कृषि संस्थान आलू के स्वस्थ और अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि किसान इस तकनीक से कम लागत में आलू की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं।
1: तो इस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी जब दी जाती है किसी किसान को या किसी कंपनी को, तो उसमें लगभग एक साल से लेकर सवा साल तक जो CPRI की वैज्ञानिकों की टीम है उस कंपनी के साथ या किसान के साथ काम करती है। तो इस तरह से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से और बीज की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ज़्यादा पैदा किया जाता है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इस टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं और आलू की बीज की दुनिया में जो आ रही क्रांति है उस क्रांति का आप हिस्सा बन सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और अभी आपने एरोपोनिक खेती जो एक किस्म का नया आविष्कार भी है और किस तरीके से इस विधि का उपयोग करके हम अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, ये बहुत जानना बहुत आवश्यक था। सो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना, आशा करते हैं कि हमारे किसान साथी, क्योंकि बहुत सारी इसमें गवर्नमेंट की ओर से भी बहुत सारी सब्सिडी भी दी जाती है और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो अधिकारी रहते हैं, सरकारी विभाग के अधिकारी रहते हैं, वैज्ञानिक रहते हैं, उनसे भी जाकर हमें सलाह लेनी चाहिए। और चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी के मौसम में सबसे पहले तो हमें अपनी मिट्टी की जांच कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा ताकि तत्व के बारे में पता चले कि किस तत्व की हमारे खेत में कमी है। साथ साथ में गर्मियों की गहरी जुताई पर भी हमें जोर देना चाहिए और इन नई नई पद्धतियों के बारे में सुनना चाहिए, गौर फरमाना चाहिए और इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो दोस्तों, दिन न करत भय अपन ई कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं भोले राम कुशवाहा जी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत हैं भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन को। अब आओ सुनते हैं फिर से नहीं कि गाय भाई भजन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

जा बिजनार सतावे के मैया मोए जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गायब है सुर में एक अच्छा भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत को।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजा मेरे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब यही गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोले राम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

अटरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उमर मोरी बारी। देखो कितनो प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमे अपन सब जन ने सुनो है ये, और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जाबे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

गलियों गलियों फिरता हूँ, कब से जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आँख

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और कहीं ना एक तरफ ये देवी है दूजा में पुजारी हूँ और

0: कहना है कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो।

0: बताएं कैसे? यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
1: जवा सतली कहना है हमने इतना प्यार करो, मालूम कितना
0: कितना
1: कल

कांग्रेस ने भगवान हनुमान ने आई थी, तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे, जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो कब बोले

0: बारी हमारे गांव की। नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जानने के लाने जो कार्यक्रम बारी हमारे गांव की। दोस्तों बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में अपन एक गांव की ओर चलते हैं और वो गांव की जानकारी अपन जानते हैं कि ये गांव में क्या व्यवस्था पानी की है, क्या व्यवस्था बिजली की, क्या व्यवस्था साफ सफाई की है, क्या व्यवस्था सड़क की है और कौन अच्छी बात है ये गांव में और कौन बात बा खराब है। सो ये सब बातें अपन अपने ही कार्यक्रम में करते हैं। सो इसी प्रकार से आज अपन बारी हमारे गांव की कार्यक्रम में चलें झांसी की ओर पुलिया नंबर 9 के पास। सो उतें मिलें भैया कालीचरण कुशवाहा जी से और जानें उतें के हाल। तो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों कालीचरण भैया से मिलवे से पहले अपन एक बढ़िया से गीत को सुनते हैं और गीत को आनंद लेते हैं और गीत के बाद फिर चले अपन झांसी पुलिया नंबर 9 की जानकारी को अपन जाने जो कालीचरण भैया जी से अपन बात करें। तो दोस्तों आप पहला तो सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद।
1: और धोखा

0: सुन रही बिल्कुल
1: सोचत मन भीतर हर दैया

बताएं हम हिरन हसन लगत अनहोनी, हिरन हसन लगत अनहोनी। और वैसे तुम्हारी हर चीज बहुत अच्छी लगत हमें। तुमका चालो चलते हो नोनी, तुमका चालो चलते हो नोनी। सुलगती नोनी सी कलैया कलैया कलैया।

0: तुम केड़ी के मन सब रंगी मानत नहीं है, अगर नहीं मानत तो कछु संत महात्मन को या महापुरुषन को संग कर लो।
1: कैसे कर पाए?
0: ऐसे खोलो ज्ञान के बारे ही के, खोलो ज्ञानों के बारे ही के, और सुनो मानो बचनो प्यार पिए के, मानो बचनो प्यारों से पिए के। बिल्कुल सही गए। और मौका ना मिले तो हर दैया हर दैया हर दैया।

0: सुनो
1: बताओ।
0: मानो बातो हिजे से मोरी।
1: कैसी?
0: बिल्कुल हृदय से अगर कह रही हूँ तो बिल्कुल मानो बात। और मानो बातो हिजे से मोरी, किस्मत हालो चमको जे तोरी, किस्मत हालो चमको जे तोरी। आए मनन करो मानो मन मैया, हाँ मनन करो मानो मन मैया, मन मैया मन मैया तुम्हारे जैसो और को नैया। हाँ धूप न दियो।

0: बिल्कुल दोस्तों, देखो जो कितनों प्यारो गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लाओ। ये गीत को गा रहे थे दशरथ प्रजापति जी और रजनी नायक जी। अब दोस्तों आओ ये गीत के संगे संगे है अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम में मिलते हैं भैया कालीचरण कुशवाहा जी से, जो झांसी पुलिया नंबर 9 के रविवाय हैं। सो आओ दोस्तों, अब देर ना करत भाई, मिलते हैं भैया जी से।
1: अच्छा पहला तो आप अपनो नाम पतो बताओ।
2: हमारा नाम कालीचरण कुशवाहा है, पुलिया नंबर 9 झांसी सुभाष स्कूल के पास।
1: बिल्कुल, पुलिया नंबर 9 झांसी के रविवाय हैं अपन। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अपनो जो पुलिया नंबर 9 है वार्ड नंबर के में पड़त?
2: वार्ड नंबर 17।
1: वार्ड नंबर 17 में? चलो बहुत अच्छी बात है, 17 में है आप। तो अब बात करें अपन वार्ड नंबर 17 की। तो अपने ते जो वार्ड नंबर 17 में पानी की बात करें अगर, तो पीवे के पानी की क्या व्यवस्था है, कहाँ से उत्पन्न
2: पानी? पानी तो बोरिंग का भी है।
1: अच्छा बोरिंग को है?
2: अच्छा नल भी पर्याप्त आती है, पहले पे दिक्कत होती थी।
1: अच्छा जिनके पास बोरिंग नैया उनके पास कहाँ
2: नल की सुविधा?
1: अच्छा नल की सुविधा है, चलो बहुत अच्छी बात है। कितनी बढ़िया सुविधा है कि नल आवता आपके दिन।

0: जो नल आउ तो जो सुबह शाम आउत या फिर
1: सुबह शाम आते हैं और फ्री वाले भी मतलब दिन भर भी आते हैं।
0: अच्छा का दो प्रकार के नल हैं?
1: हाँ दो प्रकार के।
0: इनमें कैसे फ्री वाले जो आपका चूंकि ऐसी बात
1: वो जैसे पब्लिक उसके जैसे मोहल्लों में नहीं लगा देते हैं सरकारी नल।
0: अच्छा सरकारी नल हाँ। जैसे अब गांव में देखो जाते के पूरा मोहल्ला में सरकारी नल लगे रहते तो इस हिसाब से का आपके जो शहर की बात करें तो सरकारी नल ऐसे हैं का पब्लिक
1: नल भी है और हैंडपंप भी सरकारी है।
0: अच्छा तो ज्यादातर लोग काय को यूज करते हैंडपंप को या
1: नल को नल का भी करने लगे हैं जिन जिन को कहीं पानी नहीं है तो हैंडपंप भी सूख जाते हैं
0: हाँ
1: तो नल द्वारा उनको पूर्ति हो जाती है।
0: अच्छा नल की सप्लाई से पानी ले चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो पानी की व्यवस्था कोनो ऐसी तो है नहीं क्या गड़बड़ हो गए?
1: नहीं पानी की बढ़िया व्यवस्था है।
0: पानी पर्याप्त है?
1: पर्याप्त है।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो सबसे मेन बात जो रहते अपने खाबे पीबे में व पानी की बात रहते तो पानी की व्यवस्था आपके मोहल्ला में बिल्कुल बढ़िया सी है?
1: बढ़िया है मोहल्ले में है झांसी क्षेत्र में तो पानी की समस्या तो है ही नहीं।
0: चलो
1: गर्मियों में हो जाती है
0: कहीं कहीं
1: लेकिन वैसी नहीं होती है कि बिल्कुल पानी के लिए बैठ जाए।
0: तो देखो जा बात भाई अपनी पानी की अब एक क्रम में बात करें अपने बिजली की सुविधा की तो बिजली के लाने का है आपके नगर पंचायत की तरफ से है लाइट
1: तो या रोडों पर लाइटें लग गई हैं हर खम्भे पे लाइट है।
0: अच्छा हर खम्भे पे लाइट
1: लगी है लाइट है अच्छी व्यवस्था हुई है।
0: हाँ जो बहुत अच्छा है कि आपके रोड पे लाइट हो
1: बहुत अच्छा काम।
0: अच्छा एक क्रम में बात करें अपने मकानन की लाइट की तो इमें का लाइट दिन रात रहते या फिर
1: 24 घंटे रहती है
0: इको समय रत के फलाने समय पे आए फलाने समय पे चले
1: कोई समय नहीं कटौती पहले होती थी
0: अब नहीं हो रही।
1: अब नहीं होती है 24 घंटे आती है बिजली।
0: चलो बहुत अच्छी तो बिजली की भी सुविधा आपके पर्याप्त
1: बहुत अच्छी
0: है। चलो बहुत अच्छी बात। अब एक क्रम में बात करें अपन साफ सफाई की
1: साफ सफाई भी बहुत अच्छी
0: साफ सफाई के लाने बात अगर करें तो साफ सफाई में आप कौन प्रकार की साफ सफाई की बात कह रहे हैं?
1: रोड की सफाई है
0: रोड की सफाई हाँ, चल बहुत अच्छी
1: वार्ड तो हर वार्ड में हर मोहल्ले में एक आदमी लगा हुआ है सफाई कर्मचारी जो होते हैं
0: हाँ,
1: हर मोहल्ले में एक एक जो है लगा हुआ है
0: हर मोहल्ले में सफाई कर्मी आउट तो जिस सफाई कर्मी सप्ताह में आउट के डेली
1: डेली
0: आते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो सफाई के लाने का है कि जब जिते अपन सफाई से रहे तो उते बीमारी ना है
1: बिल्कुल नहीं
0: है तो जब बीमारी ना है तो अपन को बीमारी
1: साफ सफाई रहेगी तो बीमारी आने का सवाल
0: ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो आपके जो हमने बात करी है बात आपने सब बता दी है अब एक क्रम में हम आपसे जो जानबो चाहे कि आपके अंदर आपके जो अपन कहते हमारे दिल में जा बात खटक रही तो वह बात आप जो बताओ कि कौन सी आपको लग रही कि हमारे मोहल्ला में ये चीज की कमी हमें लग रही।
1: अभी तो वैसे सब हर चीज की पूर्ति हो चुकी है कोई ऐसा नहीं है कि मतलब विभागीय स्थानीय जो मतलब कर्मचारी है या लाइट विभाग है या सफाई कर्मचारी है वो बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं।
0: अगर बात करें अपन शिक्षा की तो शिक्षा को क्या स्तर है?
1: शिक्षा भी बहुत अच्छी मतलब जो है स्तर से हो रही है।
0: पढ़ाई लिखाई के लाने वाले बच्चे कहाँ जाते?
1: स्कूल है सुभाष स्कूल है और मतलब सरकारी स्कूल है उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट तो फिर हर माँ बाप जो है चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े।
0: बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर अपन बात सरकारी की करें तो आपके जो वार्ड नंबर है तो आपके वार्ड में है या फिर आपके वार्ड से दूर है?
1: नहीं वार्ड मतलब 9 नंबरी में है पुलिया नंबर 9 में है सरकारी स्कूल है और सुभाष स्कूल में भी जो है अच्छा सरकारी वो भी है।
0: चलो तो शिक्षा भी अच्छी व्यवस्था है शिक्षा
1: की सारी व्यवस्था बढ़िया।
0: चलो बहुत अच्छी बात।
1: बीजेपी जब से आई है हाँ। से सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से अच्छी
0: हुए। तो जो आपने जब बात कही है कि देखो हमें कोनो परेशानी नहीं है वो सब बढ़िया चल रहा है आपके तो आपने इतनी अच्छी बातचीत करी और ये बातचीत में भाग लो आपने इतना कीमती समय दो इकलाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। हाँ देखो दोस्तों जी तो हते कालीचरण भैया जी जिनने अपन को बताई है पुलिया 9 नंबर की पूरी बात के हमारे का बिजली की व्यवस्था है का पानी की व्यवस्था है का रोड की व्यवस्था है का साफ सफाई की व्यवस्था है सारी बातें इनने अपन को बताई हैं। अब दोस्तों एक क्रम में अपन कथुइयों के देखो माता दिन भैया बिल्कुल बातन में लगे हैं और मनोरंजन की ओर कोनो ध्यान नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों सो मनोरंजन के लाने आओ सुना थे एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4।

0: बिल्कुल दोस्तों, बिस खा के मर गौ शान पे बीर बुंदेला प्यारो हो। देखो कितनों बढ़िया जो हरदोल गीत अपन सब जन ने सुनो है, ये गीत को आनंद लाओ है। ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम बारी हमारे गांव से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गौ है। अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात अगले कार्यक्रम में, जब तक के लाने नमस्कार। बारी हमारे गांव की,
1: आजीविका जाने सुने और अपनाए।
2: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
3: और मनीष, कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
2: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
3: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
3: बिल्कुल, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं, क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है

0: वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है। लेकिन यदि व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यावसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पे रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसको पैकिंग बाजार में अपनी ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
1: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
0: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे जी से मुलाकात आपको करवा रहे हैं, जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
0: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
0: जी,
2: चना
0: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है, इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
0: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
0: जी,
2: तिल का तेल है
0: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाए और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटे, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, चूंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
0: जी, जी,
2: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
0: बिल्कुल सर,
2: तो इसलिए उन विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
0: जी।
2: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
0: जी,
2: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है, तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
0: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
2: इसे स्वरोजगार, जिसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
0: जी,
2: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
0: जी,
2: उस तहत में काम कर सकते हैं
0: जी।
2: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है,
0: बिल्कुल सर,
2: तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
0: जी,
2: जैसे बेसन है
0: जी,
2: दलिया है
0: जी,
2: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है,
0: बिल्कुल सर,
2: तो किसान जो है के साथ घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
0: जी,
2: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती हैं उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना लें, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG है फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या FIO होता है
0: जी,
2: तो उसके आधार पर काम कर लें और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी।

0: और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं। लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर,
1: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है। जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
0: जी।
1: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए गांव में लोगों को। इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है। युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
0: जी।
1: और जो चीजें हैं आज के युग में, जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है, लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
0: जी,
1: दाल जो है चना है, चने की ग्रेडिंग कर ले
0: जी,
1: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
0: जी,
1: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए। जो दलाल हैं, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में। एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
0: जी, जी।
1: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आके खोलने की जरूरत है
0: जी।
1: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
0: बिल्कुल सर,
1: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। और चूंकि अगर सर बात कर रहे हैं इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर।
1: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख लें
0: जी,
1: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
0: बिल्कुल सर।
1: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
0: बिल्कुल सर।
1: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है। यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
0: बिल्कुल सर।
1: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
0: जी।
1: अगर किया जाए, इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है
0: जी। बिल्कुल।
1: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
0: जी।
1: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
0: जी।
1: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
0: जी।
1: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
0: जी
1: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
0: जी।
1: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
1: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं, सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर

0: लोग दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो।
1: बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके, एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
2: तो साथियों, अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है
3: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तिगेला के पास ओछा।
2: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं, फोन नंबर है हमारा
4: 9219207749।
3: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मरीज को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
3: नमस्कार।
2: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: साथियों नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं, चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की। तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी

0: हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों, 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स हैं, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण हैं तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाएं, सुनने की आदत डालें, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों, नकारात्मक जो शब्द होता है, ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती हैं, पीछे पीछे चली आती हैं और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है से आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है, जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं, वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा पड़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उस

0: में कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों, कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा। बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है, आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हमें क्या, हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों, आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को, और गीत के बाद फिर लौटेंगे और व्यक्तित्व विकास की जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं उस पर चर्चा होगी। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। और

मैं अनपढ़ भी बनी रहती तब भी मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मुझे जिंदा तो रहने देते। रहती अनपढ़ तो उस पर भी ना थी उजर, मैं गरीब।

0: प्यार।
1: और कहने लगी कि अगर मैं होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाती, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती और कहने लगी, कहने लगी

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का

0: अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें, सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। यह सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपकी व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
0: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होंगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किन्हीं बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है, आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं। इसलिए अपने भावों को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
0: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाएं और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फूफा फूफा भाई, मामा माई भाई और जीजा जीजी भाई,

0: इनको तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपका व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
1: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं, उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं, इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर, जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे। सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो इसके लिए ये बात है बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती हैं और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती हैं। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन

0: आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। जिस साथ ही में हमारा पता भी है जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा।
0: साथियों अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हेंगे कि उनको कैसो सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को, उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिसे शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन उन्हें बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जात, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती है, और फिर देख भी की तो बातें ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि आज जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतों ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे बेओरे देखे आते ही, तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की इस कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से भी आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेके भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करते हैंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुन रहेंगे। तो आ चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: क्या नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं। क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही
0: हूँ। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही हैं?
1: हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको मायको कहते हैं?
1: हम मायको झांसी में है।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी में है गोविंद चौराहे है, ढाल के नीचे। राज डॉक्टर आपने सुना हूँ कभी?
0: हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में खूब है? तो
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, बहने थे, 3 बहने थे।
0: अच्छा, तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा आते
0: हो? अच्छा, आपके घर पे क्या काम
1: हो? वहाँ पे तो चौका बर्तन करते सब देते हो, जगह जमीन नहीं आती, मजबूरी करते हो, और आप बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा,
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, हमारी अम्मा के लिए का करती।
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो, तो कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समो छोटो।
0: अच्छा, 10 रुपया?
1: हाँ, 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते, हमें 10 बच्चा खिलाते उनके।
0: अच्छा,
1: खाना देती वे और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए दे देती महीना भर में।
0: तो मतलब इस तरह से चलत रहते
1: हैं।
0: अच्छा, अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने पढ़ाई कितने तक करी
1: है आपने? हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रहेगी, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो आपने बचपन में काम, तो जैसे आपने बताया कि काम भी करे, लेकिन उसे और छोटो जो बचपन होते ही, जब मान लो अपन काम करवे की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी रहा, जब तो खेलता ही खाता
0: रहा। हाँ, तो वही खेलवे की बात हम कर रहे हैं कि आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: अब खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, बस यही खेल खेलते थे। और चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: साउंड को मुझे चपेटा कलर।
0: अच्छा अच्छा,
1: जी खेल रहा है।
0: तो साउंड में आप गीत भी गाती हूँ? हाँ, खेलत में गीत। हाँ, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो मैंने गीत में।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते? तो पहले तो गा सुन लो आप।
1: अब भूल गए, अब तो बुढ़ापो ऐसे कुछ नहीं आता।
0: इतने बुढ़ापो नहीं है आपको? 60 साल हो रही, लेकिन बुढ़ापो नहीं लगा था आपको?
1: बुढ़ापो का नहीं है।
0: तो कौन सा गीत गाती
1: है? कौनो नहीं गाते
0: हैं, आप गाते नहीं। अच्छा, आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब बूढ़े हो गए, अब सहेलियां को जाने कहाँ कहाँ गई, को
0: तो नाम को पता हो
1: जाए, को अंगूरी ना तो काऊ को पुष्पा ना तो ऐसे सबके नाम आते सबके, कोई की कहीं शादी हो गई, कहीं की कोई की कहीं हो, अपने अपने घर चली नहीं सब।
0: अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते
0: कभी
1: कभी, इकट्ठे हो जाता खुशी तो जो से अपन लोग मायके में आप तो सब बहने मिला तो अच्छा लगता।
0: अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से थे, मतलब पैर का कपड़ा कौन कौन से चलाते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती, सो चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते और फिर आके पहनते, और फिर आकर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, बुक्सेट ये पहन लेते, और हम तुमने फिर आके दे रही तो भी पहन लेंगे बस, और यही पहरा होता।
0: मतलब कोनो अलग से नहीं
1: है? हाँ, कोनो अलग से नहीं है। तो
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में?
1: हमारी अब हमें तो ध्यान नहीं है बहन, कितने उम्र में हमारी भैया थी
0: कोई, तो मतलब कछु तो अंदाजा हुई है। जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई थी
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिसे आपकी शादी हो रही थी वहाँ आपने देखा तो?
1: हाँ,
0: पहले से देखा तो?
1: हाँ, नहीं नहीं पहले कहाँ देखा देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: बेटे से तो आते ही हमारे बाप माताई 8-9 साल के साथ, 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा,
1: तो जिन जिन को काम करते हमारी माताई ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी को ब्याह करने, बोली तुम्हें 10-10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 चुका। फिर उन लोगों ने सबने 100-100 रुपया फोन में दाए थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो वही बताई नहीं होते कहीं में करता
0: हूँ 500 रुपया में ब्याह होगा
1: नहीं सब संजस है। कछु कछु लोगों ने ऐसे पुनो आती है देखे, उन लोगों ने और ज्यादा दे दे, वैसे ही के बिटिया को पुन ब्याह हो रहा, पुण्य में दे दो पैसा।
0: अच्छा,
1: बड़े बड़े सेठ लोग
0: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल में भाई है
1: राधापुर
0: में ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई है, जैसे पहले दिन तेल मंडप,
1: पहले पहले मंडप तेल भाव कर मंडप भाव फिर टीका हुआ।
0: अच्छा तीन ही दिन को ब्याह होता
1: है? हाँ तीन दिन को होता है।
0: तो बारात तीन दिन मिली रही थी कि एक
1: नहीं
0: दिना?
1: एक ही दिन नहीं तीन दिन मिली रही थी बारात
0: तेल वाला दिन आ जाती
1: नहीं ले आते टीका के दिन।
0: अच्छा
1: और फिर भावर मावर बराती फिर वो दिन थोड़ी जाती बारात दूसरे दिन जाती
0: दूसरे दिन जाती। तो जब जयमाला डरी तो आपकी
1: जयमाला नहीं डरी
0: कैसा हो तो पहले ब्याह?
1: हाँ जयमाला नहीं डरी मैं ना मैं तो वो लट्ठा को सफेद लट्ठा नहीं जिसे मार्किन से अपन खोलियन हाँ खोलियन पे चढ़ा वही को लांगा वही को दुपट्टा।
0: अच्छा
1: और जब तुम जो होट पर लाल बापो में लाल।
0: अच्छा
1: जय माला नहीं लड़का मड़वा घाला ना तो चावल मार दे।
0: अच्छा चावल जी का घाले जाता आपको कुछ बताओ
1: नहीं बता हमें नहीं बता।
0: अच्छा चावल को कुछ बता ही नहीं है सब घाल रहे थे आप
1: तो मड़वा के नाचे और खड़ो कर ला हमारी बुआ ने बोले चावल मार दे सब ने बस फिर बाहर चलो गो लड़का फिर पंगत मंगत होने लगी पंगत मंगत भाई फिर चढ़ाओ मड़ाओ चढ़ो हमें पेजना चढ़ी थी एक किलो के खंगवज्जा
0: एक किलो की पेजना
1: हाँ एक किलो के पेजना और खंगवज्जा
0: वो
1: जो इतने पैरत थे पहने थे
0: बाजू बंद
1: हाँ बे चढ़े थे।
0: अच्छा
1: तो अब रखे हो आप की बात छह लड़का होगा छह लड़का के ब्याह कर ला है।
0: अच्छा
1: कहाँ से
0: सही बात है। अच्छा आपकी विदा का है
1: हमारी डोल में डोल जब डोली नहीं रहा
0: वही
1: में वही थी बेटा
0: नहीं
1: उतर से तो फिर बैलगाड़ी में आए थे लेकिन बेदा हो के हमारी गाड़ी गई से आई थी।
0: अच्छा बैलगाड़ी
1: से होती पहले बेदा सवाई की होती हम अच्छी का पहले जे वाहन कहाँ थे और चातक नंगा जाते खेलार तक नंगा जाते अब तो एक कदम नहीं निगरा आदमी
0: अब तो अगर तुम्हें भी जाना
1: अगर तुम्हें कारस देव न जाना है तो गाड़ी से
0: जाना
1: जाना
0: सही बात है। तो फिर जब आप विदा होके इतने आई तो ससुराल में कुकु मिलो आपको
1: ससुराल में सास ससुर जेठानी।
0: अच्छा आप कितने नंबर की
1: हैं? हम दूसरे नंबर के नानी ले दो
0: नंदन की शादी हुई।
1: हाँ
0: अच्छा शादी के बाद
1: बड़ी हती
0: बड़ी हती। अच्छा तो फिर आपके एते का रस में भाई मतलब कंकन छूटा
1: कंकन छूटो हाथे लगे थे दो तीन चार दिन रहे थे फिर चले गए थे।
0: अच्छा और खिचड़ी मिचड़ी नहीं बनाई?
1: खिचड़ी बनाई थी
0: तो आपने खुद बनाई थी?
1: नहीं बना पाई थी हमने हमारी जेठानी ने बना दी थी।
0: अच्छा
1: और चमचा से तरवा दी थी
0: नाम होगा तो आप
1: द्वारे में ओरेंडर हुआ दे।
0: अच्छा ओरेंडर हुआ दी थी। जैसे जब आपने खिचड़ी बनाई सबने खाई तो फिर का करने मिलो तो आप?
1: हमें नहीं एक कछु नहीं मिलो तो हमें तो और पैसा रखने पड़े थे चूल्हे में
0: वो देने
1: आए। हाँ
0: ये उल्टो नहीं हो रहा
1: वो पहले देता ही हते अभी भी देता मोरन के। हाँ जैसे खिचड़ी बनवा तो चूल्हे में रखवा बहु से सास लेते हुए पैसा चाहे दस धरे चाहे ग्यारह हो चाहे एक सौ रख दे लेकिन वो सास ले ओरेंडा तो ओरेन पे रखत बहु तो बेबी सास ले।
0: अच्छा
1: जी की सास ना हो तो जेठानी
0: ले तो जैसे पहले एक अब एक रसम होती जूड़ा खुलती सास तो आपके समय में खुलती?
1: नहीं हमारे समय में नहीं
0: खुलती जूड़ा नहीं खुलती
1: नहीं।
0: अच्छा आपकी
1: जो छोड़ा खुलती जो
0: छोड़ा खुलती
1: जो छोड़ा
0: तो ये भी पैसा
1: सास खोल सकती है
0: खोल सकती
1: है खोरसा खाती सास
0: इसो काम हाथ हो तो मतलब
1: जब सास रे में आ जा तो जो छोड़ा खोल सकती सास
0: नहीं तो
1: कछु महत्व कछु महत्व।
0: अच्छा आपको नहीं पता ना
1: छोटे आते से कछु दे आते
0: समझते नहीं आते होते। फिर आपके काम जब आप दूसरी बार आए अपनी ससुराल में फिर कैसे काम कराती जेठानी के संग मिलकर कराती या लड़ाई होती?
1: जेठानी के संग कराते लड़ाई काहे को होती?
0: कभी लड़ाई नहीं भैया?
1: नहीं हमारी नहीं भाई जेठानी से ना सास से भाई कभी
0: ना काहे नहीं होती। आप सीधी आती के दो जने
1: दो एक से आते मिल के कर लेते हो बस सबने फिर से आने होगा ऐसे सब अलग अलग होगा।
0: अच्छा और ये सासरी में का काम होती है आपकी? खेती
1: होती रात से खेती होती।
0: अच्छा
1: पहले मोटर कहाँ हती रात ऐसे खेती होती से रात चलाते रहते।
0: अच्छा, और जैसे खेती की आपने बात करी है तो आप सुबह से चक्की भी पी सकती है?
1: चक्की पी सकते हो सवेरे 4 बजे से।
0: कितने बजे उठती हैं आप?
1: 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से पी सकते, 5-6 किलो नाच पीस लेते।
0: 5-6 किलो रोज पीसने?
1: हाँ रोज, इतना ही जेठानी पी सकती।
0: तो भी कभी पी सकती आप जैसे सुबह से उठ के पी सकती
1: हो? 4 बजे से भी पी सकती।
0: संगे पी सकती
1: हूँ? ना कभी संगे कभी अलग अलग पी
0: सकती। अच्छा, फिर उसके बाद चक्की पीसने के बाद का काम?
1: फिर गोबर मोबर डालते।
0: कितनी गाय भैंसे होती आप?
1: पहला 10-12 गैया होती, गोबर मोबर डालते, झाड़ा झूरी करते, फिर एक जनी रोटी बनाने लगती, एक जनी काम करने लगती।
0: अच्छा, ऊपर वो काम कर लेती।
1: तो फिर कुबा पे 8 बजे तक निकल जाते, सो रात चलाते दिन भर।
0: अच्छा, वहाँ से वहाँ नहीं
1: आते? नहीं, बैलेंस से।
0: बैलेंस से? हाँ, बैलेंस से चलते वो लड़का।
1: घड़ियाँ नहीं आती लोहे
0: की? हाँ हाँ हाँ।
1: सो वही चलाते रहते, कब हम साथ जेठानी चलाती, कब हम चलाते रहते।
0: तो मतलब लड़ाई नहीं होती आपको? नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
1: हम 6 लड़का।
0: 6 लड़का? और लड़की?
1: लड़की नहीं है एक।
0: लड़की नहीं है एक? तो अपने लड़कन को तो पढ़ाओ जो हुए?
1: हाँ, पाए को पढ़ाओ, मैं परेशानी हती सो कुछ नहीं पढ़ा।
0: अच्छा,
1: 5-5 पढ़ा जाइए स्कूल में बस।
0: अच्छा, सरकारी? हाँ। स्कूल में। तो अब सबकी शादी हो गई?
1: हाँ सबकी हो गई, सब नाती ने तुलन की हो गई।
0: अच्छा, नातीन की भी हो गई? कितनी नाती है?
1: 6 नाती है, 6 नाती।

0: अच्छा, तो
1: बिलाद की
0: को मतलब बिलाद बड़ों
1: परिवार है? हाँ, तो छह लड़का हैं, तो दो दो हैं सबके।
0: अच्छा,
1: और एक के चार हैं बड़े के, तीन मोड़ी हैं।
0: तो एक मोड़ी
1: तो आप बिरोबर हो गई,
0: बिलाद बड़ों परिवार है।
1: तीन ना ना मोड़ी के दो मोड़ी मोड़ा होगा, एक के छोटी, एक के मोड़ा होगा, एक के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है, मोड़ा है वो।
0: तो बहुत बड़ा परिवार है, आपको अच्छा लगा थी।
1: हाँ, तो
0: अच्छा
1: हाँ,
0: लगा
1: हाँ,
0: थी, है ना?
1: हाँ,
0: तो आप सुहाटा नहीं खेलती हो?
1: कैसे खेलती?
0: आप अपने
1: सुबह तो सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौक पूरो, बस फिर खेल
0: गाना गाते।
1: अब भूल गई,
0: भूलने नहीं आते, याद करने आते। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी हैं अम्मा। लेकिन एक बात और, आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
1: 20 साल से ज्यादा हो गई।
0: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी, तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
1: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
0: कैसे लग गई थी? मतलब
1: पहले उनने इन्हें चार जनन के कागज दे थे भर के, तो सबने 200 रुपया में लगते।
0: अच्छा,
1: तो सब जना ने कही 200 रुपया में का खा रहे, हमें नहीं करने।
0: हाँ।
1: हमें नहीं करने। सो फिर बोली चाची तुम लग जाओ, अभी 200 में रह, कभी ज्यादा भी हो सकत।
0: हाँ,
1: 350 में लगते हमें 200 रुपया।
0: धीरे धीरे करके
1: सो फिर हम इनके ससुर बोले लग जाओ हम दे दे, वो करें तो मैं 2-4 पहली नाच खावे के लाने बच जगह कर। फिर इनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच, हम पानी भरे आते इनको, तो फिर लगे रहे इनके। तो पानी तो अभी भी अभी छोड़ दो, हमने बना तो नहीं अभी।
0: अच्छा।
1: तो जब से हमने आंगनबाड़ी करी जब से पानी भर हो उनको, मतलब खावे पीवे की परेशानी से, कि अब जैसे नहीं आ तो जिदे तो सकते खावे, और नहीं करते तो को दे रहे।
0: सही बात है,
1: दे रहे तो को भी ना करे।
0: और आज आपको कितनी मिल जाती, मतलब आपको घर चला भी ला के मिल जाता आपको?
1: आप 5,000 होगा ये 2-3 महीना, नहीं 2,500 में
0: रहते।
1: फिर 350 है हमारे, फिर 1500
0: भाई। हाँ, धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया। आपके पूरे जीवन को अनुभव का रहो, मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
1: हम जो खेती किसानी सीखी हो, जब आंगनबाड़ी कर ली, फिर से जाकर
0: नहीं। आपको क्या लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें?
1: जब पहले तो महत्व देखो, आप सोच रहे आदमी के पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते, लेकिन जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ पढ़ा लिख रहे।
0: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई जरूरी है अपने जीवन के लिए?
1: अब जैसे पेट को तो रोटी नहीं है, पढ़वे की का सोच रहे बताओ?
0: सही बात है। लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल, फ्री किताबें मिल रही है, ड्रेस मिल रही है।
1: लेकिन नाम मिल रहा है, पहले कहाँ मिल
0: रहा? हाँ, पहले नहीं मिला, तो लेकिन अब मिल रही, तो अभी के लाना पढ़ाई चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से?
1: और का कहना
0: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय, तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती है कि अपनी लड़कियों को पढ़ाए चाहिए कि नहीं?
1: अपनी को तो सब हमारी मोनी सब 8-8 पढ़ी, नातनी नाती पढ़े
0: तो पढ़ाना चाहिए।
1: हाँ, सब पढ़ रहे, को पढ़ रहा हो, को हुआ बड़ी बड़ी हो गई, सब साथ साथ 8-8 में करके छोड़ दो, ब्याह कर दो नातन की।
0: बहुत बढ़िया,
1: को कर दो, अब दो नाती पढ़ रहे की।
0: चलो बढ़िया अम्मा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, अपने पूरे जीवन के बारे में हमें बताओ, ये बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

रेडियो अपनी बात है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे। दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन और सुन रहे थे लक्ष्मी जी को, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन और ने जानो हैगो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो हैगो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, इनको बचपन कैसो बीतो हैगो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और ने जानी हैंगी। और साथ में इनने बताई हैगी कि 20 साल से जी आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी, लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी। कहे कि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ो महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे थे, होते भटक रहे हैंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचन लगत हैंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उखो चौका वासन करने आ है गो, घर को काम ही देखने आ है गो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैंगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपना परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़तो। तो देखो अब अपना समय होते हो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहते हैं, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई हैगी, कहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैंगे या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैंगे अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो आप अपना समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार, और चला चला सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो कि उज्यान पठा के हमारे विजय जी ने पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जो है कटिवर्गीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनित रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मृदु रोमिलासिता, शून्य लासिता तथा उकटा, या जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मृदु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के 1 माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मृदु रोमिल आसिता का विशेष का प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैम, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है के कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का ट्रीटमेंट कर लें और जो हमारे बीज हैं उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक, यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग हैं ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको 3 बताए हैं, मृदु रोमिलासिता, चूर्णिलासिता और उकटा या ग्लानि रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही

0: इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो
1: जी सर।
0: सबसे पहला जो रोग है मृदुरोमलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है। तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहां शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मुड़ जाते हैं। तो ये धब्बे जो है वहां जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से। और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है। और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूरी होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, और विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए
1: जी मैम।
0: और अगेती बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए। और अगर हम बात करें रसायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोजेब 0.25%
1: जी
0: और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोजेब इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होते हैं 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोजेब को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम। यही मैम, अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो
0: जी
1: शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस
0: जी
1: समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाए तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए आजकल मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
1: यस
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, उनकी लागत भी कम होती है और इसको इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: जी जी
1: और
0: जी
1: अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर
0: जी
1: बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो। साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहां तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी मैम,
0: इनकी जगह हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं इस
1: बिल्कुल मैम,
0: क्षेत्र में।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा
0: जी
1: जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो
1: जी
0: वहां पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है कि वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो
1: जी
0: ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी कम कर देते हैं। तो
1: जी मैम,
0: इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है। जी
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए इन
0: जी
1: बातों
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए,
1: अच्छा
0: वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज
1: बिल्कुल
0: कर
1: मैम,
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोगजनक और
1: जी
0: वही
1: मैम,
0: रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए
1: जी
0: अगर आप उसको बदल बदल के लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम,
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसीलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढेंचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये?
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में, फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहां रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो, जो
1: अच्छा
0: उसकी
1: अच्छा
0: पैदावार को कम कर रहा है।
1: जी
0: और एक नो डाउट, अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम,
0: खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है, लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं,
0: जी
1: क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये
0: जी
1: हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था। वो सवाल
0: जी
1: हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर
0: जी
1: पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैम
0: जी
1: बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु
0: जी
1: परिवर्तन और बाल विवाह, इसको अगर
0: जी
1: जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक
0: जी
1: दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है
0: जी
1: कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर
0: जी
1: महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने
0: जी
1: को मिलता है, उसके
0: जी
1: बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
1: जी मैम,
0: तो हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम,
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे,
1: मैम,
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, वहाँ शिक्षा की कमी है।
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम,
0: जहां शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम,
0: और
1: बिल्कुल
0: जहां शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम,
0: और इस कुप्रथा को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम,
0: लोग जो है वो, अगर लोग शिक्षित हो जाए और
1: जी मैम,
0: हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए, तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी मैम,
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: इसका
1: मैम
0: जो है,
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम,
0: एक और
1: जी
0: जी
1: मैम,
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही बात
0: शिक्षित हो
1: कही है
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा
0: करें।
1: विकल्प है
0: जी
1: जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: जी क्योंकि
1: समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती,
0: होंगे,
1: जी
0: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी
1: जी
0: आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल,
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
1: जी मैम,
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम,
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भली भांति
0: जी
1: जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो
0: जी
1: लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन
0: जी
1: करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम,
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी। तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम,
0: दिल्ली की तरफ या आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था। तो
1: जी मैम,
0: अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा, तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या शादी करना है
1: जी
0: वो
1: मैम,
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम वो जो कमाएंगे वो परिवार को भेजेंगे। तो
1: जी मैम, जी मैम,
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम,
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम,
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम, जी मैम,
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा कोई लेना नहीं चाह रहा
1: जी मैम,
0: था, लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है।
1: जी मैम। इसका मैम बस
0: तो
1: लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका
0: जी
1: समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको।
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद
1: मैम आपने
0: करें।
1: समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: जी धन्यवाद,
1: थैंक यू मैम।
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपनाकर। जी धन्यवाद।
1: चलिए थैंक यू साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं ईवेरा अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम में हम आपको बता देंगे कि आसपास के गांव में या फिर आसपास की जगह पे जो चल रही गतिविधियां सो उनको अपन सुनत हैं और उनकी उनको जानत हैं। अब दोस्तों, एक क्रम में हम आप सब जन को ले चलें आज के कार्यक्रम आसपास में आजादपुरा गाँव की ओर। और दोस्तों, आजादपुरा में जितने सातार पे हो रही थी जी फागे, सो अपन सुनत हैं ये फागन को कवरेज। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

家了。

देखो दोस्तों, जी तो अपन सब जन ने फागें सुनी, इन फागन को आनंद लो है जो आजादपुरा गांव में सातार पे फागें हो रही थी। अब दोस्तों एक क्रम में हम आप सब जन को एक और बढ़िया सी फाग सुनवाउ थे और फाग को आनंद आप लियो और हम ले।

सा कानिया ओ कमरियादा अथैया की। ओ ईश्वर सुन सुन देह तपत है जो तबा तै।

बिल्कुल दोस्तों, दैया दैया की कौन जमान मांगो, देखो कितनी बढ़िया, जब फाग अपन सब जन ने सुनी को आनंद लो है, ईखों गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी। अब दोस्तों एक के संगे हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ये कार्यक्रम आसपास से आपके दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में, यही बेरा पे जब तक के लाने, नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन को जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होत है, सो चलत चलत आपों ने लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आपों ने फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास।